शोभा जोशी ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना समूह स्वर में सुनते हैं, जिसके रचयिता हैं गजानन कुलकर्णी, संगीतकार हैं रविंद्र खासनेस।

गजानन कुलकर्णी ने रची यह भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविंद्र खासनेस। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं प्रभाकर कारेकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

प्रभाकर कार्यकर ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विहाग में ख्याल गायन. कलाकार हैं दिलीप कुमार घोष. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग विहाग में ख्याल. कलाकार दिलीप कुमार घोष.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen to a khayal in the rag Bihag. Our artist is Dilip Kumar Ghosh. Accompanying him on the tabla is Pradyut Paul and on the harmonium is Rathindranath Chakraborty. Listen now to a khayal in the rag Bihag. Our artist Dilip Kumar Ghosh.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विहाग में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे दिलीप कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रद्युत पाल और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथीन्द्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं बिमल कुमार रॉय। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमोय मित्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार बिमल कुमार रॉय।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बिहाग। अवर आर्टिस्ट वॉज दिलीप कुमार घोष। Accompanying him on the tabla was Pradyut Pal, and on the harmonium was Ruthindranath Chakraborty. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to the tabla in Teen Taal. Our artist is Bimal Kumar Roy. Accompanying him on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to the tabla in Teen Taal. Our artist, Bimal Kumar Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज ये कलाकार थे विमल कुमार रॉय। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरण मोय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू द तबला इन तीन ताल। अवर आर्टिस्ट वॉज बिमल कुमार रॉय। Accompanying him on the harmonium was Hiranmoy Mitra. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कर है वीणा मुरडूर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग विभास सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है ए हो नरहर नारायण, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है छांडो कृष्ण जुगल बैया। सात संगत तबला सचिन राजोपाध्ये, हारमोनियम उपेन्द्र सहरबुद्धे।

थे वीण मुरडुर द्वारा प्रस्तुत राग बिभास। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते वीणा मुरडुर द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है सो ही रसना जोगी, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना बोल है वीरज में धूम मचायो श्याम। आपके साथ तबले पर है सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

थे वीणा मुरुडू द्वारा प्रस्तुत राग भीमदास। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्य। हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। राग हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है.

0: बोल हैं मोरे घर आजा। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ हैव फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खान। ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। मुजाहिद हुसैन खान फर्स्ट प्रेजेंट्स राग पूरिया कल्याण, in which you will hear the vilambit khayal set to ek taal, and this will be followed by the chota khayal set to drut teen taal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पुरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पुरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खान presenting Rag Malkons, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ek Taal, followed by a Tarana set to Teen Taal.

again.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम, 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आप सभी का कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं अपर्णा पणशीकर का गायन। आपने प्रस्तुत किया है राग बागेश्वरी। विलंबित ख्याल जब ताल में निबद्ध है और बोल है अब ना रहूं मैं। द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है और बोल है पिया ना मिले। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रामदास परसुले और हारमोनियम पर है सुयुक्त कुंडलकर। सुनते हैं अपर्णा पणशीकर का गाया हुआ राग बागेश्वरी।

श्रोताओं हम सुन रहे थे अपर्णा पणशीकर का गाया हुआ राग बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रामदास परसुले और हारमोनियम पर थे सुयोग कुंडलकर। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं मीनल दातार का गाया हुआ राग नारायणी। विलित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और बोल है बामना रे बिचारो। द्रुत ख्याल आधा तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है साहेलारिया गाओ रे आज। अब साथ तबले पर है माधव मोड़क और हारमोनियम पर है उमेश पुरोहित। सुनते हैं राग नारायणी, कलाकार मीनल दातार।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मीनल दातार का गाया हुआ राग नारायणी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे माधव मोड़क और हारमोनियम पर उमेश पुरोहित। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है अब होगी ध्रुपद कलाकार हैं शर्मिला रॉय चौधरी आपके साथ पखवास पर हैं तापस दास और हारमोनियम संगी हैं कमलाखा मुखोपाध्याय लीजिए प्रस्तुत है अब होगी ध्रुपद कलाकार हैं शर्मिला रॉय चौधरी
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक दिस इवनिंग वी प्रेजेंट A Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Abhogi Dhrupad. Our artist is Sharmila Roy Chowdhury. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Taposh Das and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Abhogi Dhrupad. Our artist Sharmila Roy Chowdhury.

Did it,

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप अभोगी ध्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थी शर्मिला राय चौधरी। आपके साथ पखवास पर थे तापस दास और हारमोनियम संगी थे कमला खम मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गोपाल मिश्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पिंटू रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गोपाल मिश्रा।
1: You were listening to Abhogi Dhrupad. Our artist was Sharmila Roy Choudhury. Accompanying our artist on the pahavaj was Taposh Das and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Teen Taal. Our artist is Gopal Mishra. Accompanying our artist on the harmonium is Pintu Roy. Listen now to the tabla in Teen Taal. Our artist, Gopal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गोपाल मिश्रा और आपके साथ हारमोनी पर संगत कर रहे थे पिंटू रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट वॉज गोपाल मिश्रा। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द हारमोनियम वॉज Pintu Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकर लाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Shri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankar Lal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था पंडित कैलाश चंद शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.

आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं कृष्णाराम चौधरी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णाराम चौधरी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग केदार। मध्य लयगत झपताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग केदार।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन। कलाकार थे कृष्णराम चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णराम चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग नटभैरव। विलंबित एवं द्रुत दोनों बंदिशें तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सरोद रिसाइटल बाय अभिजीत राय चौधरी। ही इज प्रेजेंटिंग राग नटभैरव। बोथ द विलंबित एंड द्रुत बंदिश आर बेस्ड ऑन तीन ताल। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

रागम 24 घंटे सातुदीन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरुद पर राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं उन्हीं का बजाया सरुद पर राग चारुकेशी। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग चारू के शी। वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सरोद। ही वॉज प्लेइंग राग चारू के शी। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग मिश्र भैरवी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

ये है रागम 24 घंटे सातु दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग सरोद बाई अभिजीत राय चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं रहीम नाम तेरो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं ऐ करतार. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Ustad Mazhar Ali Khan and Ustad Jawad Ali Khan. They begin their recital with a rendition in Raag Gunkali. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal and the words are Rahim Naam Tero. The Drut Khayal is set to Teen Taal and the words are Ae Kartar. They are accompanied on the tabla by Vinod Pathak, on the sarangi by Dilshad Ahmed and on the harmonium by Zameer Ahmed.

0: अभी आप उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगत की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं अब मोरी राम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने।
1: यू जस्ट हर्ड उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां परफॉर्मिंग राग गुनकली। दे वर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद। उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां विल नाउ परफॉर्म राग तोड़ी। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल एंड द वर्ड्स आर अब मोरी राम। द द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल। द अकंपनिस्ट्स आर विनोद पाठक ऑन द तबला, दिलशाद अहमद ऑन द सारंगी एंड जमीर अहमद ऑन द हारमोनियम।

0: अभी आप उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां। दे वर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम। जय जय।

दी आंख कुलकर्णी की रचना आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। संगीतकार थे राम कदम। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना।

0: श्रोताओं,
1: आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावडीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओ, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए निरोबा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।